0: हिसाब से सबको प्रशिक्षित कर जो कोई यहाँ ऐसा था कि जन रास्ता ज्यादा सीखी पर में रास्ता नहीं है बैठी हो
1: तपाईँलाई थाहा छ असोज कार्तिकको मङ्सिर महिनामा तपाईँहरू

0: भगवान संसारों अपने गुरुद्वार के लिए अपन प्रतिभा गीत मन के मोहन के ज्ञान में गीत हमने कायक मन राघव मोहन के आज की उपस्थिति भी बाकी आज हमने अवश्य गाना पुराण पुरुष के कहने का हमने सुना
1: हमारा

नगरपालिका किसान चुक्ति मध्ये सिद्धांत वैक्रेताय मोबाईल नंबर 98 86 13 616 फोन 98 200 83 94

0: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहितमा जाने सन्देश।
1: नमस्कार, म रत्न प्रधान।

0: कराने ढलल रह प्रीतम कमरा खेल छसै छलगिन सुखामा फेकन झनसारा ढलगिन कह आ गमना गमना अवस्थम पाया मन त ठिकै हो मोर त बेमी राधा धनी हे मलाई चित्नु त पनि सक्थान गिन अब यहाँ त मल मन चित्नु त मल र मल चोरी हो कि का हो मोर त मन पनि छिट्नु त पनि निश्चित मेरो फेस थलगिन कह
1: उसे का जन्म था उसमें जो हाथ अंदर गन गई हाथ पर बैठना

हमारा नालों में पानी बहा बन सकने अभी से के आसपास तथा दुकान का जोखिम क्षेत्र का प्रशंसापन सतर्क रहा जिले के बाद संभावित बेहतरता और जोखिम मध्य बात स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय निकाय प्रति जारी करना सूचना पंद्रह का समय मौसम बुलेटिन कहाँ कल संध्या ठीक 5 बजे फिर दस मौसम बुलेटिन में खरीद बाकी।

0: अवस्था में कभी कर रहे हैं। नेपाल प्रहरी एक सुंदर सुना हुआ 11-13 मानव बेच विक्रम युद्ध प्रतिरोध 11-77 तक बाल हेल्पलाइन 10-9-8-9 कॉल कर रहे हो। हमें मिले मात्र भारतीय यूनेस्को को प्राप्त इंटरनेशनल नेपाल पुलिस अधिकारी का जिला प्रशासन कार्यालय पटिया द्वारा जनहित में जारी संदेश।
1: मोबाइल

0: विपत्ति व्यवस्थापन पर रात को आदमी कार्यालय विपत्ति व्यवस्थापन शाखा तथा समुद्री स्वास्थ्य कार्यालय खुला अथवा निर्देशन देखिएगा प्रमुख प्रशासक अधिकारी धर्मराज ने उपाय से हस्ताक्षरित सूचना में दमकल एम्बुलेंस लगाए अत्यावश्यक सवारी साधन और जनशक्ति स्टैंड पाइप अवस्था में तैयारी थोड़ा समय निर्देशन देखिएगा उसी कपड़िया तालुका पालिका के पानी कोरोना का कारण विषय संभावित विपद तथा जोखिम होना मद्देनजर देखा विद्यार्थी शिक्षक तथा कर्मचारी का सुरक्षा सुनिश्चित कर पानी का अंतर्गत सबको विद्यालय में प्रदेश और खाक विधान मिलान टूर्नामेंट का विधा कर प्रमुख प्रशासन के अधिकारी अर्जुन धार से हस्ताक्षरित सूचना में उल्लेख करिएगा उसे पारंपरिक नगर पालिका में मौजूदी एक तीन नगर पालिका भीतर सरकारी कार्यालय सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय व प्रशासनिक निकाय में सार्वजनिक विधा देना निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी एक प्रकार शाही से हस्ताक्षरित सूचना में उल्लेख करिएगा बैठक प्रणाली लागू सतो हिरोइन सिंधिक पढ़ा पटा सहित पांच सह नियंत्रण मूल्य जिला प्रहरी कार्य मातहत प्रहरी चौकी जंगली कार्यक्रम से खटलत प्रहरी टोली प्रयकाल गांव पालिका सात प्रणाली पूर्व से तीन ग्राम 20 मिलीग्राम पदार्थ एक थान की पैड मोबाइल एक थान साइकिल और 3,550 रूपया नगद सहित नियंत्रण मूल्य प्रहरी चलेगा उसे से बाकी को बैजनाथ का उपाय का एक 20 वर्षीय तीनों धारो 30 वर्षीय बाल कुमार धारो होना 1 ग्राम 107 मिलीग्राम धारो पदार्थ एक धान उप मोबाइल दुई धान साइकिल सहित प्रदान करने के बाद ओखा ठाउँ से बाकी का खजुरा गांव पालिका आख्या 31 वर्षीय अख्तर मोहम्मद धारो वड़ा नंबर 7 सोनपुर 40 वर्षीय मोहम्मद वासिम खान 1 ग्राम 740 मिलीग्राम पदार्थ दुई ठान एंड्रोइड मोबाइल 33,540 रूपया नगद सहित नियंत्रण मूल्य प्रक्रिया प्रहरी चलेगा पकड़ पर्वत पांच सहन उपरावश्यक अनुसंधान विधिवत प्रहरी चलेगा आप राष्ट्रीय समाचार के बारे बिंदु से
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा का 81 सत्रमा सहभागी भए बुधको अमेरिका को न्यूयोर्कबाट प्रधानमंत्री शाह और संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस से भेटवार्ता गर्न कार्यक्रमहरूमा नेपाली समय अनुसार सुखद बिहान राष्ट्र संघीय महासभाका 81 सत्रहरूलाई सम्बोधन गर्दाबाट महासभामा प्रधानमन्त्री शाह नेपाल जलवायु परिवर्तन प्रगति र सर्वभक्ति नगर विषय फेरि उठेर तयारी गर्नबाट विकसित तथा ध्यान कार्बन उत्सर्जन गर्न जनशक्ति जलवायु संकटको असर भक्ति नगर नेपाल जनसङ्ख्या सर न्यायपूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने विषयमा नेपालको दरबार बसाइएको प्रधानमन्त्री शाह गतको सुखी यहाँ जलवायु जनकीपर सरकारी जन्य क्षतिका क्षतिपूर्ति आर्थिक सहयोग नेपाली देश हिमालय वर्षको समस्या नेपाल दक्षिण यौन उत्सर्जन कोरोना देशको अवस्थान कालको वातावरणीय योगदान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सद्भाव लगायत विषय महासभामा उठेनबाट प्रधानमन्त्री शाह सहित स्वदेश हुन कार्यक्रमहरू परराष्ट्र मन्त्रालय चलेको

सुरक्षा की परंपरा को अपराधिक बनाई रखा वो प्रधानमंत्री पालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र सहभागी अमेरिका

ट्रंप के समय इसराइली खेल कूद महिला कबड्डी टूर्नामेंट में पाकिस्तान फाइनल में प्रवेश और ईरान से मकेली पुरुष कबड्डी का सांत्वना का जीत। Thank you.

0: कदम कर से हम खाली सुझाए स्वस्थ बताए सुरक्षित परिवार रेडियो द्वारा संगीत बजाई संगीत
1: Thank you.

0: परिषद संचालन अनुसार रोकका लागि एक छ रिपोर्ट। मौसम विभाग का अधिकारी अनुसार गएको 24 घंटा में देश का अधिकांश स्थान में वर्षा मापन कर लुम्बिनी और गंडकी प्रदेश का धेरै स्थान में कोशी का कई ठाव में भारी वर्षा बताइए। बंगाल को खाड़ी विकसित न्यूनचापीय प्रणाली का कारण नेपाल में वर्षा भइरहेको हो। वर्षा को संभावित प्रवृत्ति बारे विभाग की महानिर्देशक अर्चना श्रेष्ठ भन्छन्।
1: प्रदेश
0: में तो गाड़ी अभी भाग अर मौसमी अवस्था कायम रहने भाई।

मौजूदा तरबियत जो कि प्राइमरी रहने का संदर्भ में आज देश का कतिपय स्थान में विद्यालय